बताऊँ हम आकाशवाणी जमशेदपुर की विविध भारती आज दिन बुधवार है। सत्रवर्ष 1948 से आकार मार्च के बीच तदनुसार 24 जून सन 2020 इस तरह सुबह के 5 बजकर

स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत से पाकिस्तान के बनने वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का सिखों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले जल जहाज अब भी भारत की खाड़ी में है। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद जायरा जहाज हॉर्मोन जल्द अनुमत से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मोन जल्द अनुमत को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार संगीनों के कारण मानसून के संभावित प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने

का चयन और अधीन सुरक्षा और स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी पुलिस संस्थानों का सर्वे और अधीन सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश जैसे विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमने जारी रखे हुए हैं तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबू धाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जे डी वेल्स और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थन

बात नहीं है। मौके पर ही दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पश्चिम प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम से कर्नाटक मध्य महाराष्ट्र बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वही विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आंध्र प्रदेश बिहार लक्षद्वीप मध्य प्रदेश कोंकण गोवा महाराष्ट्र पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल

什么，写不出什么，是吧？

स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदन वार्ता।

रहे हैं विविध भारती। घरों का निरीक्षण के लिए आज से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद आप सुनिए श्रीराम चरित मानस का भाग 229 मिनट से। संगीत संविधा में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वालन का विहंगम संसार। कलाकार एस एल भंडारा इस कार्यक्रम का सातवा भाग आज आप सुनेंगे समय सुबह व शाम 6:45 मिनट से। सागर से लेकर आएंगे भूले बिखरे गीत सागर से 20 मिनट से हम हो रही प्यार के। आज से 15 मिनट से और दिन में 2 बजे से ट्रेन आप सुनेंगे। चित्रों का समय होगा सुबह 8:30 मिनट से और रात्रि 8:15 से। 9:30 मिनट से आज के दिन का केंद्रित होगा अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। दस बजे से 11 में सेलुलॉइड के सितारे गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से पंचा सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे समय 10 बजे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग और 12:05 से समय होगा यादों की महफिल का। एक बजे से वक्त होगा सीरीला सफर का। 2:30 से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे।

पत्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग आप सुनेंगे। संपादन सहायक साजन भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता सुदर्श खान। वक्ता ने बताया 4 बजे दिन में। सात बजे से छाया की 5:20 से तराने नए पुराने लेकर आएंगे। वक्त होगा भक्ति रचनाओं का संध्या रंजन में। 7 बजे से पौधी साथियों के लिए जयमाला लेकर हाजिर होंगे। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत रात अनुराग सुनेगा। 8 बजे से हवा महल में सुनेगा घंटी, 2 होगी।

यीशु जागते हैं कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह ने अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और जंगल वन में भेज कर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को यही समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जान

श्री राम चरित मानस की।

0: सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जानी मानी वॉयलिन वादक पंडित एस एल संगारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी। पंडित जी, रागों की चर्चा हो रही है। पिछली कड़ी में हमने राग शंकरा की बात की, आज राग विश्व समाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जैन जी, ये बहुत रेलिवेंट और बहुत आपने अच्छा चयन किया, क्योंकि शंकरा बहुत गंभीर राग है, जबकि विश्व समाज लाइट प्रकृति का राग है, सुगम संगीत में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और ठुमरी दादरे में मुख्य रूप से समाज में ठुमरी गाई जाती है, और लाइट म्यूजिक का सबसे प्रिय राग है ये मुख्य समाज।
1: हाँ,
2: ठुमरी दादरा में बनारस और पटियाला, ये दो स्कूल बहुत बड़े स्कूल रहे हैं। पटियाला में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे मुनव्वर अली खान, अजय चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद पंडित, ये सब लोग उस परंपरा को फॉलो करते हैं।

जो इसके बाद जो कलाकार मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है वो गिरजा देवी जी, और गिरजा देवी जी के बाद सिद्धेश्वरी देवी या उनकी समकालीन कह लीजिए आप, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी जो इस परंपरा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो उनके साथ मैंने कुछ कॉन्सर्ट संगत की थी, तो मुझे भी उनके गाने की बड़ी मन में उनका गाना बैठा। तो उनकी

0: जैसे जैसे ठुमरी के स्वर गूंज रहे थे, मन में गीत भर रहा था, फिर बुद्धा मिल गया।
1: अरे बहुत अच्छा, मंडारे साहब का,
0: मंडारे साहब का गाना है,
1: बिल्कुल
0: आयो कहाँ से घनश्याम,
1: बिल्कुल।
0: और ये शब्द मजनू सुल्तानपुरी के हैं, संगीतकार राहुल देवर्मन, वही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: बुद्धा मिल गया फिल्म से यकीन है मैं आपको सुनवाया श्रोता। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायोलिन का विहंगम संसार श्रोता संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस एल पंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: भारती के संग्रहालय

0: प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खुद,
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने वाले पेंटर अखिलेश जी एक बात,
0: जितना ज्यादा

beautiful.

की माता मेघा कलंकना, पंकज मलिक, उमा शशि, सीएल सहजल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। पंकज मलिक ने संगीत दिया और पंडित सुदर्शन ने इसे लिखा।

0: वाली की आवाजों में मेरी तबियत सुन रहे थे रंगीन रॉ के फिल्म का नाम था सिद्धांत शर्मा ने से लिखा रोशन का संगीत। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मिश्रा ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें उनके रोज शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से प्रताप सुन रही है प्रोग्राम भूले बिखरे गीत।

0: गोविंदी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी
1: उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में जादू वाली अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीवा अमरापुरकर की यादों की।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी

wurde gebietet als Samson Israel.

अपनी लता और बन से प्रेम गुप्ता की आवाज में जीवन याद से लगे दुल्हन वही जो दिया मन भाई कल तराम था रविंद्र।

किशोर कुमार की आवाज में गीत आप सुन रहे थे गुप्ता आधे फिल्म से मजनू सुल्तानपुरी ने लिखा राजेश रोशन का संगीत। इसके साथ ही प्रोग्राम हमारे राही प्यार से यही सम्पन्न होता है।

东西。

के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत न

संबंधी दूसरे खेलों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे लिए पड़ोसी भी सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन ये सत्य कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है

दोनों की सड़कों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी सड़क का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर

0: प्राग हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाए।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने वाले पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज की रविवार 24 जून शाम 4 बजे फिर विविध भारती पर एक
0: चित्रकार।

करें।

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्ट टू सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम से नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें उनके लिए जो शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती के प्रताप सिंह ने कल शाम 6 लोग

के यीशु संता नाम था। अनिता दत्त ने इसे लिखा और विशाल और शेखर दत्त ने भी। अभी वक्त है इस प्रोग्राम में छोटी सी अंतराल का।

0: वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के घुटन में जब तक न माना जाए वो आप कह सकते हैं कि
1: सुन की हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुनो के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में वासुदेव की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45
2: विविध भारती पर। विविध भारती के साथ आप सुन रहे प्रोग्राम श्रुति लोक।

Lord, as we

0: भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आपको मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। चाहे हमारे पेंटर अखिलेश से एक वाक्य जितना ज्यादा समय आप अपने को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं जान सकते हैं। आपके दिमाग 24 जून शाम 4 बजे
1: इस प्रकार से नई प्रोग्राम से लोग बदल दिखा दीजिए।

कपूर परिवार की सदस्य है। पर दादा पृथ्वी राज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती है लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने। और इस तरह करिश्मा आगे फिल्मों में तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम।

सुषमा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं।

राजा बाबू कोली नंबर वन बीवी नंबर वन शक्ति राजा हिंदुस्तानी राजन चले ससुराल आइए सुने।

see my time.

चैतन्य आप सभी को अपने दोस्त श्यामली का आदान नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल है। जहाँ अल्फाज कम पड़ जाए वहाँ से वजन शुरू होती है। आइए रूह को सुकून देने वाले गजलों के सफर पर। साहित्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली साहब के गायन गजलें। हैं हजरत मोहनी मोहानी के लिखे एक गजल से गुलाम अली। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना

Thank you.

आपको आंखों से लगातार क्या है मेरे दोस्त भाई, में वो भी है बराबर।

का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हर दिन जो प्यार करेगा फिल्म से, टाइटल ट्रैक थे और इस चीज को लिखा है समय ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

विश्वास की आवाज भी थी। कभी आप समय सीख रही थी दिल्ली। अब आइए सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज में दीदी प्यार की फिल्म का ये गीत। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है और संगीत

ही देखे और हम उबर

देखते हैं, कोई भी पूजा के लिए।

इतनी ताकत थी कि अंग्रेज सरकार की ओर से घबराती थी। उन्होंने सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि साहित्य में भी अपना योगदान दिया। वे आधुनिक हिंदी और पंजाबी साहित्य के शुरुआती स्तंभों में से एक हैं। साल 1877 में उनके लिखे उपन्यास भाग्यवती को कुछ विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण और स्त्री शिक्षा की पुरजोर वकालत की गई है। उन्होंने शिक्षा के राज की विधियाँ और पंजाबी बातचीत जैसी पुस्तकें लिखी, जिसमें पंजाबी जैसी को एक नई दिशा मिली। उनकी भाषा इतनी सरल और सुगम थी कि सीधे आम जनमानस के दिलों में उतर जाती है। 24 जून 1881 को महज 44 वर्ष की अल्पायु में पंडित आत्मानंद इस नष्ट संसार को छोड़ के चले गए। आज जब हम ओम जय जगदीश गाते हैं तो अनजाने में

खबरा और शासन की आवाजों में पूरब और पश्चिम फिल्म का ये आरती अभी आप सुन रहे थे और इसे लिखा था पंडित श्रद्धाराम शर्मा के।

पता ही नहीं था कि इसका सामना किससे होने वाला। महारानी दुर्गावती ने सिर्फ महलों में करना ही नहीं सीखा था, ये तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में भी माहिर थी। युद्ध के दौरान मैदान में जब वो हाथ में तलवार लेकर निकलती थी तो दुश्मनों के घर से ध्वस्त हो जाते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में शिखर को अपनी संतान माना था और जब मातृभूमि की रक्षा की बात आई तो उसकी रक्षा के लिए वो ढाल बन कर ले गए। जी हाँ, तीन बार मुगलों की सीमा से भूल जाने वाली रानी दुर्गावती का आखिरी युद्ध जबलपुर के पास नरसारी नाले के किनारे हुआ था। रानी की सेना छोटी थी लेकिन हौसले हिमालय से जुड़े थे। युद्ध में जब वो पूरा से छली बदल के आत्मसमर्पण की गई थी, उन्होंने अपने ही कतार से अपने आप को समाप्त कर दिया। दोस्तों, महारानी दुर्गावती का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो,

तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लेता।

में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में आज का दिन उन महिलाओं को धन्यवाद करने का एक तरीका है जिन्होंने कूटनीतिक भूमिकाओं में बदलाव किया, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करके हम ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हैं कि

बहुत जरूरी है वो है हम सबका सेहतमंद होना, और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह उठते ही गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करनी है, और पानी जब भी पिए तो बैठ कर एक एक घूंट मुंह में गोल गोल घुमा सकती है। साथ ही अगर हो सके तो खाने के 30 मिनट पहले या

Terrible, terrible, terrible.

इस बाजू फिल्म से गीता दत्त की आवाज में सहे लुधियानवी के बोल और संगीतकार है सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया

0: संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली भजन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रही हूँ साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राही। साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: Before I was hustling my

0: var. Sofra kim dedi? Dedi. Dedi.
1: और जैसे हम यहाँ पर मेहफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 35।

चार सौ बीस फिल्म से गीता दत्त की आवाज में जानकार अक्षर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में मधुर सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

या पश्चिम में, फिर मैं गीता दत्त की आवाज में और आप तो मुझे याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने।

शकील बदायूं के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत। कागज के फूल कंठ से गीता दत्त की आवाज में कैसी आदमी के बोल और सुचिंदी वर्मन का सचिव।

का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक सफर जहाँ हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लेकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत तो कहती है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दर्शकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी करती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की

perfect. You won't be a nature of mother and dad. We'll make a rich side, give a rich side. So, we have all these potential polka dots. Her door may up me, which are eight fashion if you ask me for it. कुर्बानी के जंपसूट के हाथ में विश्वास को नया रूप दिया तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमाली बना दिया रंगीला का रंग हो या तेरे नाम की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर घटी महक के बेटे पर सुकून भरे कपड़ों तक फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी

सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अपनी ख्वाहिश है। तो आइए यारों के इंस्टाग्राम पोस्ट में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी वैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक टाइम हर 20 साल फैशन हर 20 साल बाद पलट कर आती है। तो हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वो ही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े साड़ियाँ बालों की भी वही फैशन। पर एक बात साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पश्चिमी नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की वाहिनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पात बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी हमारे श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं माँ तो माँ होती है। बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, कुछ माता जी जब भी लिंकन रोड से हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी बेटे के हेयर को शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्म पत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कहवा दी है और कहती है कि अब ज्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े तो हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवान जीवन ड्रेस अंकड़ा है और एक सब नए। तो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं बता सकते, काफी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने खास जरूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी है तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती है, सच समझ कर करते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है लेकिन किसी न किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई स्टाइल होगी जो मन में था पहन लो

जो व्यवस्था के केंद्र से बोल रहे हैं एक सदस्य आज जहाज पर तीन की क्वेश्चन 10 मिनट होने को है। सुखी पदों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के आगे केंद्र।

समाचारों के साथ मैं श्रुति कुमार चलिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र।

चेहरे की स्थापना से नागरिक सेवाएं भी पारदर्शी और सुलभपूर्ण है। मुख्यमंत्री निमंत्रित ने स्वास्थ्य विभाग के राज्य को मिली थी मजबूती। कृषि मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर कहा, अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला।

yaptın dedi. Tamam.

स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे देखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही कसूर तो अच्छा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बात भी आपकी सही है कि जैसे जिसको जो अच्छा लगे तो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता टाइट से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से आज तक बचपन से फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक मिडी फ्रॉक पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं टूटे, बस सैंडल छोड़ के एक पैर तोड़ क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती। HMT टाइटन की घड़ी के साथ बालों का बताए रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे। बाबा के हाथ से कई बार खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से बात याद आई, 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखा कर बनवा ली और उन्होंने ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती है कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन से इसकी साड़ियाँ बनारसी कॉटन चाहिए, ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में ऐसे घूंघट की वीणा राय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती है जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, घर से खरीद लिया और पहनकर सबको बताया कि घूंघट वाली ही वीणा राय ने पहनी है। और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती है तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। मरीज श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैथिली शो फिल्म देखने जाया करती थी। बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी, वह उनके साथ गई। साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए। और जब कॉलेज टाइम कर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी, यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देख कर बनाया, बहुत बढ़िया बात है। ये भी अपने आप में ज्ञान है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी, साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की

लिया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म सीआईडी से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिजाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी उन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस इस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, आप पता से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है आगमन की फिल्म आगमन करी अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात फिल्म से महिला और दोनों श्रोताओं पर लागू होती है, कौन सी हीरोइन आपको दिखी जो जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख दीजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए फिल्म का नाम।

जोड़ते हैं कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका इसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है। इस बात को हम मानते हैं, चिन्नी बाबू को ये याद कर रहे हैं जैसे स्टॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि नितिन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इस तरह से चलना अच्छा। और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और भी, मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती है तो सलवार सूट और जीन्स पहनकर ले जाती है। देखिए माँ को क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती है। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर घर अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है अपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब मजबूत बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सब छोटे थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विक पहनती थी, ये तो हमें भी नहीं पता। सबसे लिए पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं ये गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न

कश्मीर से, मनाली या दक्षिण भारत में, या फिर भी तो घूमे होंगे, जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खींच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो भी चाहिए? भारत के या विदेश कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो, आपके आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा।

लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक सिंपल ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में। और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं, और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गए थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी और उसे संभाल कर रखा है। कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी दिखानी किसी की दिखानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं। इस बात का जिक्र भी वो कर रही है। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहाँ पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले गीत पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछते थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछते थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बलजील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती है बॉबी फिल्म का याद है कि ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे और फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं के उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी में भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरु जी से कटाई भी होती थी। हाँ वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरु जी पीटा करते थे, और हमारे गुरु जी तो कहते थे गुरु जी मारे धम्म धम्म विद्या आविष्ठम तम शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ कॉलेज में टाइवल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं।

स्टाइल बहुत लोकप्रिय है जी। कितनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच पे आप होते हैं, फिल्मों में होते हैं, तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अभी फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है और उन्होंने पहले जो एक्टर थे यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीजें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं। तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत। बताइए इसके गायक कलाकार कौन है और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम?

निशा शामिल थे बोल प्रीतम के संगीत के बाद और हमने आपसे पूछा कि इसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राजस्थान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कम्फर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक फैन वाले जूते हुआ करते हैं, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला, यदि मैं इससे करीना तो बोले पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है जी बिल्कुल। कुछ हमारी बहुत ज़्यादा लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी काजोल ने शुरू में डगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ मूड के मुताबिक उसको पहना गया था जी बिल्कुल। यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। लाइक हमारे श्रोता लिखते हैं ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है, ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद है और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लूंगी अच्छी लगती है पहनने से, तो किसी को होता है बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो उन लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है जिनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वही है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें

किसी को कुछ भी स्वेटर देवानंद की मफलर का फैशन लेकर छा गए थे जी बिल्कुल। और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था, शायद ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और अनीता लुल्ला ने भी उसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। चलिए सुनते हैं गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन है, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है कि हमने पूछा था कि इसके बीच संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये दोनों बातें आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिजाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए। इतनी अच्छी रोचक जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो। नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी की मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं।

तत्वों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्टेट निकाल सकते हैं। अपनी सिर्फ का उपयोग और कई रोचक

0: के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें इतनी दिलचस्प है कि आप खुद
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने वाले पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने

अध्यक्ष के तौर पर अपने स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को

कार्यक्रम मंच का राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिफ इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे

was born in Bradford, Connecticut,

Savior qui

को लगभग 5 एकड़ और जमीन भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने आप उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री

24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर

जगह बना ली। जनरल मनोज के दूसरे हाथ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 हराया। 40 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो

बारे पर किसानों बार के बाद असर में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप

आखिरी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है जाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन।

ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੋਤਨ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ

के देखने को समझ नहीं है। वाकई इतनी दिलचस्प है, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जाने वाले पिक्चर अखिलेश के लिए एक बात, जितना ज्यादा समय आप

chia sẻ này, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.

सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। इंटरनल मोबिलाइजेशन है, फोर्सेज का उपयोग किया गया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं असामाजिक तत्वों को कि यदि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हम लोग जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे समाकाशवाणी जमशेदपुर के ललित भारती केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz पर। हमसे प्रसारण के लिए आइए जुड़ते हैं ललित भारती की राष्ट्रीय सेवा से।

0: जोशी और मेरे साथ हैं सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
1: बैठी हुई हूँ आपके सामने।
0: अभी मेरे सामने तो बैठी हूँ, इन दिनों क्या कर रही हूँ मैंने ये जानना चाहे कि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
1: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
0: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिन मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, सब तरह सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सुनाई, हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, हमसे हेल्पिंग के जरिए मिलते हैं तो कितना सुखद एहसास होता है।
1: और हम है ना मंदाकिनी जी,
0: हाँ
1: कि हमारे बहुत सारी इफेक्ट यहाँ बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
0: हम सुन रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे हैं,
0: कुछ अचार भी डाल रही
1: है, हमारी मुंबलियाँ जो है अचार भी डाल रही होंगी, चलिए इधर रेडियो भी ऑन है और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं पुरुष जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परोठा ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते हैं अपने घर।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है।
0: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहणियाँ सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बढ़ लेती है ना, तो दाल और अचार की दाल हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, और
1: पता है कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
0: और यार प्याज का सोना खाना हो ना, तो उसमें भी अचार डालकर
1: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, एक करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती
0: है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखी और सखा तब तक अचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके हैं।
1: आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है? कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा हमारे क्या और विषय है,
1: शब्द हमारा

0: चुकी हूँ।
1: आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है? कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय है? उसकी
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
0: संयम
1: से कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सुनाई हमारे सखाओं से, हमारे सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात की मतलब आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, आपकी धर्म पति ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप बस आ गए,
1: संयम टूट
0: गया।
1: और सामने वाले आपको पता ही नहीं कि सामने की इन्हें दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे, क्यों नहीं चला रहे, क्या हो रहा है?
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, तो हम गहरे खो देते हैं, सीधे खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ हम अपना आपा खो देते हैं। तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखे संयम क्या है, लिखा संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब को संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम, वो तो बता रही
0: है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों भी है ना।
1: और साड़ियों का संसार जिसमें हम एकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी देखी है,
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है,
1: बहुत नरम मुलायम बहुत सुंदर,
0: तो सुना ही इस बार हम जो बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे,
1: बिल्कुल खरीदेंगे, बहुत सुंदर कलर होते हैं एकल साड़ी के,
0: क्या बात है। तो और देखिए सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा, यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं,
0: कितने क्या
1: लिखा, कितने क्या लिखा, उसमें भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं।
0: हाँ,
1: तो ये समय की बर्बादी ही,
0: बिल्कुल मिलता कुछ नहीं है,
1: है ना,
0: लेकिन हम अपने विचार वहाँ ठोस देते हैं और

कहा तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त आमद है और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो रही है उसके बाद अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया पर लिखने वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि आज किस तरह के विचार आने वाले हैं। इस समय आपका समय बर्बाद करने के बजाय हम कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाए लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए और बस मैसेज किया और छोड़ दिया। इसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया, हम नाराज हो जाए। अगर हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया सुनवा देते हैं

0: संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ हो।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियाँ अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियाँ होती है, तो कर्नाटक की साड़ी एकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी।
0: बहुत सुंदर साड़ियाँ होती है और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है और इन्हीं में से एक है एकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और एकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के एकल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम एकल साड़ी पड़ा और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
0: और एकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले साड़ी

0: देश में भी इनकी मांग हो गई है। रितु सही कहा, रिंकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपी पीने तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
1: और पारंपरिक एकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
0: हाँ बिल्कुल, और एकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती है। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या जानिए पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
1: और एक एकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी की, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथ कंधे पर बैठ कर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं। इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और एकल साड़ी जो है कर्नाटक की संस्कृति और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसरों, त्योहारों में, विशेष अवसरों से पहनने की परंपरा रही है और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
1: और आज एकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे इलाके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है घर चल सके उनको एक केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था कि कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और उसके हर धागे में सुनाई परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के साथ उसकी मेहनत छुपी होती है और ये भारतीय हथकरघा विरासत का सुंदर उदाहरण है जिसकी सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
1: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए तो आपको एकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी की, हम साड़ियाँ तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है। यदि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियाँ जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का सरकारी वक्त बहुत ज्यादा रहता है, पर थोड़ी तैयारी हमें थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रखनी कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसकी जो उसमें पहनने वाली जो कहने वाले सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहले हमें जहाँ जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं। कई लोगों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जाता है
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं साड़ियाँ,
1: यानी आप इसमें बिल्कुल ही हमें खूब लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही समय साड़ियाँ हैं उसी तरह से पहना भी जा रहा है।
0: लेकिन वो खुद जब पहना जाते हैं ना वो तो नहीं था, जब खुद प्लेट लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना उसका मजा कुछ
1: बात।

0: हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदा की, हमारी सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे हैं, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है। और बस मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है
0: एक पल दो तो आज हम सोशल मीडिया के बाद विवाद पर समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचारों को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मल्ला के नीचे ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति की सोच अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर छोपे नहीं और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है किसी पोस्ट पर किसी

0: वहीं से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, ये जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं पढ़ते हैं बोलते हैं तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ हाँ,
1: तो हमने ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
0: बर्बाद कर देती है। उससे क्या होता है सुना ले, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना, आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें जो गुस्सा आ जाता है हम बढ़ चढ़ के लगा देने लग जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो सोचिए हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ, सही है ना,
1: ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा।
0: हाँ,
1: है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से गिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है।
0: ओहो,
1: जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या फिर प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे संयम से काम।
0: हाँ, वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सुनाई कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें। यह समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी से एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि ये घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे अभद्र भाषा का बहुत इस्तेमाल होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, दो एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी बच्चे आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: तो सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, और हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का मंच है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा की सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने। और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, ऐसी जानकारियाँ देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए ऐसी जहाँ पर आप अपनी बात कहेंगे, अपनी मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो आपकी ऊर्जा उन कामों में लगे जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम लें तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियाँ हमें अच्छे से जानकारियाँ भी मिलती है। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में, इस लेखक में इतनी अच्छी बात लिखी, किताब
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला
0: लाइब्रेरी मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन

0: चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा चाइनीज जो जो अच्छा महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें हम देखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सुना कि हम वाद विवाद से बचे, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद सार्थक उसका अंत सार्थक होना चाहिए और हमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी नहीं।

0: साथ लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेसुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मतलब हाथ से व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, देश सिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
1: बिल्कुल, आपको सही कहा है हमारे छोटा लेकिन, कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिथम पर आधारित होते हैं जहाँ लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। किसी उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है, इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है। और इसके साथ ये जो है, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रचार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि के तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है, किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश के अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिसके हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ लें, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक छोटा लिखी की सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी, क्योंकि प्लेटफॉर्म साहसिक चर्चा के बजाय गोष्ठी और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस से अक्सर लोग अपनी निरंतर भूल जाती है, कभी शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में धन को निकल जाती है। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जान बूझ कर फिर ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल, एक छोटा ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखे। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वही एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में लिए जाते हैं जहाँ सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और पटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत देश को भी उसको निकाल लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं हम तक, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियाँ, अभद्र बातें करने लगेंगे। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी निगा टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विचार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया देखते देखते। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने इसका विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारी पुस्तिका लिखी रही है कि भाव विचार वाणी और व्यवहार के संयम के चार स्तंभ है। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। कि किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उत्साहित व्यक्ति या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की मानसिक क्षमता है। एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवत गीता ने कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, व्यवहार कुछ गलत बोलना चाहे या कहीं कुछ अलग करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। उसी में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया। क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम मन पर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्ति में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पसंदी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और दुखने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों तोड़ नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती है। यह बात बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता ने कहा कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य, धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीच की जो वृक्ष बनने में समय लेता है उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। हम कई बार अपना आपा खो देते हैं करते और हमें फल नहीं मिलता तो हम अपना संयम खो देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सुना, अभी कई बार हम

0: को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की हम तुरंत यह ले देते हैं। ये हम अंदर से सीखने की चीज है कि भाई बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है। ये आज मांगा तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद किए तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है, तुम कल जरूर ला देंगे या दो चार दिन बाद ला देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इन्हीं संयम सिखाएगा।
1: दूसरा वही की परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाए। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले। संयम हर जगह जरूरी है और

सारे साथियों ने, हमारे बच्चों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी। इनको आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, चेरी 1 किलो कतलों में कटीजिए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर छोटा चम्मच, सन्न भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कटलों को उबालें, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डालें और पकने दें। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कटले डाल दें, इसे मध्यम आंच पर पकने दें। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोक कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दें। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए, इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला लें। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की पन्नी में रखें। पराठे के साथ, पूरी

0: के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: इतने दिलचस्प है कि आपको
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: अखिलेश जी, एक बात,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आपके मेहमान 24 जून शाम 4 बजे
2: तो सुनाइए, हमारे सभी शक्ति और सखर जान गए होंगे कि आज के महान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत को सुन सकते हैं।
3: हम भी सुनेंगे इनके साथ,
2: बिल्कुल हम तो सुनेंगे ही,
3: और साथ में कैरी का अचार या गुरबा भी खाते
2: जमीन।
3: तो मैं एक सखी लिखती हूँ कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है, इसमें कच्ची कैरी है, ये कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में पिसा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दलदली, छोटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है, मूंगफली का या रायता 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ, लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है 4-10 वाला, ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है, इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काटे क्यूब जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छान कर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूखे साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार करने एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी देर डाल दें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें, अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, फिर लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को जैसे मिलाना है एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में, जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें, सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें या दिन में 3-4 बार आचार को चम्मच से ऊपर नीचे हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी के घर पर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों को चटनी का गाढ़ा रखना तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है गुड़ कैरी का
2: मेरे तो मुँह में पानी आ गया, इसलिए के साथ में कितना अच्छा लगेगा
3: ना।
2: मुरब्बा बनाने की सरल विधि है, तो इन्होंने कहा कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4-5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को काटे से गोल ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक चाशनी गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं, जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें, ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे, मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
3: हाँ, वही सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा आचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल।

0: का पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डाल के मिला लें और उसमें इन तेलों को डालकर मिला लें और साफ सूखे कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार मिलाएं। तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार तेल खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सूखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हम

देख सकते हैं। देखा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर चले गए। लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। सचिव सहने कार्यक्रम की प्रस्तुत करता मनोश्री पाठक।

0: आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 प्रसारण के लिए आइए जुड़ गए विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।
1: संगीत सरिता उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बज के थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और मैंने अपना जीवन शुरू किया और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई,
0: वहीं से आपका जुड़ाव हुआ। तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 वर्ष की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी हो गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे चुनाव
1: जी जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप

करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो। तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिस

तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में यही करना है या

0: हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो क्योंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण मुझसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था कांगड़ा वैली के या मसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं। तो मैंने हमारे टीचर के साथ ही मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के। तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूँगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूँगा, मगर मैं चाहूँगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियाँ थी। किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिचारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिचारी का वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर वो सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्दोष इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो बात में न कोई प्रकाश का स्रोत है न कोई लालटेन है न कोई दिया है और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन
0: हिला देने वाला था और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भाई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बदलना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया जो फाइनल ईयर होता था हमारा। और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिंग और वो पनिहारिंग जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ। मैंने उस वक्त फिर बनाया जो करेंगे और क्या होगा। तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी। तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे। तो मुझे भी आशीर्वाद मेरे अच्छे पेंटिंग में मुझे नंबर मिले और हमारे जो भी देखने वाले थे जाँचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र कहते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन्य प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है ये सारे पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है। तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूँ कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको

0: मछलियों को छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आँख मुझे मिली है वही आँख एक दर्शक के पास की है और जितना मैं देखता हूँ उतना वो भी देखता है। तो मैं उनके देखने पर संदेह नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियाँ होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियाँ दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियाँ हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियाँ हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियाँ हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को। या उसको मैं तो देखता हूँ कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, हम जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीक्षा में वो प्रवेश करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं। तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खासतौर से विविध भारती के लिए कहा है। आपने भी इसका जिक्र किया, अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएं?
0: मैं सुनाना चाहूँगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज़ है उसमें जो कशिश है वो एक उस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे। तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए। और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते
1: थे। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को काफ़ी समावेश करते होंगे।

0: मनुष्य के लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना करवाना, बताइए इस बात में।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साक्षात एक छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उनके गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपने इसी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के हम आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है।
0: कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके ध्यान में आ रही है कि आप कहीं गए हो और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको समर्पित करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने में मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। खोलती है दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक सोच रखूँ।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे सोच भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल दिखाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
1: पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। सबसे मुश्किल काम है।
0: तो अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अच्छे जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क भरा उतारा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
1: हाँ तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच इनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने में हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में ला के उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नई कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है तो कौन सा गाना सुनाएं?
1: मैं चाहूँगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
0: मौसम फिल्म का गाना है।

0: आपने बताया। और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि तीन चार महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं तीन चार महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह के
0: हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पिता बनने में छोटा था बॉम्बे में, और जहाँ से ओपनिंग में एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ रहे थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूँ, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन के चार पाँच चित्र खरीद किए, जिसको देख कर के मतलब जाहिर एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में फेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन जैसे हरवी राय, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरी कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी दोनों थे, और फिर उन्होंने उनसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनकी बात हुई। मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सबके लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सबके लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल रजा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने।
1: हाँ जी, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा कर के कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उससे 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो उसने साथ इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय दैट टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और उसके बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे, तो वो पूरी स्थिति से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन-मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर दी है उन्होंने, और तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेज करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे वैसे तो 1956 के पहले के थे और हुसैन साहब 1956 में सारे काम जो है 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये वो सरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम पर एक नॉवल लिखूं। उसने कहा कि मुझे मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
0: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: आपने लिखी है। अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी है, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारण की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आ रही है।
1: हाँ, मैंने है ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजत साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बी वी कारण थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ। और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारण जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ

0: चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर भावाकानंद एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक, तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने अनुवाद किया जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल के पास और मार्क्स का नाम किया जाता है। लाइफ उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से। और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देख लिया है, इतना ऑब्जेक्टिव से देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह कर के अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार के लोग उनका चाहते थे, यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो कि बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक रहता है, एक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर। तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दर्द पोथी और शिक्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताब है, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला से और चित्रकारों से जो बातचीत करी वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो मेरे निबंधों की एक तरह से जो एक उनके बारे में भी है, शीर्षक नहीं दर्द पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफ़ी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है। जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी, वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उनसे। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो बाहर है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिखना हो स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया, भारत भवन और 15 साल उनके साथ संपर्क रहा, और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर चिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन की, और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ पर कैनॉट प्लेस पे हमने बैनर देखा, सिक्स टू डिक्लाइन चिनाल है। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने चिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केच बुक आगे जब बढ़ाई तो

0: फिर लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए। फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पीछे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं। मुरली तो एकदम से मतलब मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, बट स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केच बुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मूर्ति सी नजर, बट ही रिमेम्बर वेरी क्लियरली हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: यहाँ पर याद कीजिए कौन सा गाना चला है?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक

एक छोटी सी किताब है तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक दिन के नॉवेलिस्ट है अभिनेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है। उसकी जो नायिका है उसका,

0: तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने ढंग को विकसित करने का तरीका है।
1: अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा गांधी संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
0: मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है और प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भी हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तो उसी रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियाँ जा पाती हैं या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
0: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। वो जो बनाना है खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है? उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारे चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपने सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में बनाते और काम करते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपने तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और उससे वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके सामने दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की आँख है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है, क्योंकि जर्मन आदमी भी मनुष्य है और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो सारी जो मनुष्य को संबोधित है बहुत ही कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जापानी हो चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद गया है जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसीलिए मुझे बाध्य करा मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूँ जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद करते हैं।
1: और
0: यहाँ
1: पर आपकी पसंद का कौन सा गाना
0: सुना है? मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,

0: नहीं पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है। तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो है अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते, समझते और बढ़ते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है।

0: लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो इस तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है। तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उससे 4 साल का, 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है। और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया। ये भी थोड़ा सा बताया,
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं, तो 6 घंटे फादे के पास चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा समय आप अपने काम को देंगे, उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसमें अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा हो जाता है। मूड में किस तरह से हम उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहाँ जहाँ आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है। मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। कि ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
0: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
1: मुश्किल होता है।
0: इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आकाशवाणी जमशेदपुर का ये विविध भारती केंद्र है।

peut-être pas dans un autre.

Thank you.

ऐसा हुआ रोबोट बना लेता है।

Thank you.

योग कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत है समीर का, संगीत है जतिन ललित का और फिल्म का नाम है

इसमें

0: सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या टीम बना ली, कहा कि उनको हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखते हैं। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी छोड़ ली कुमरिया तेरी मेरी।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। नुसरत बद्र का यह गीत सुनिए, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

को लिखा है आमीन।

không bao giờ xa lạ.

tal cual.

Thank you.

समाप्त होगी रात 11 बजे। कार्यक्रम जिसमें

Thank you.

popular, but it's going to be a problem.

एवं समन सामग्री।

फिनलैंड शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। उन्हें जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बनाई, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकेंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन देखते हैं। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी

लक्ष्मी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत के बोल लिखे हैं

Christ.

लाइन सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बनाई, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकेंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन लिखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी।

ने और महेंद्र कपूर की आवाजों में

0: जुड़े कुछ यादगार लम्हे हैं आपसे।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बनाई, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखी, बस इसको हुक लाइन रखी। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी, छोड़ ली

烦吗？你比如说

0: गाय बाय देख के चला करो। हाँ
1: अरे वो तो मैं बड़ी होशियारी से करती हूँ हमेशा। वो तो क्या है ना, आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि पवन सुखने बचा दिया।
0: वैसे कौन हो अम्मा, कहाँ रहती हो?
1: अरे बेटा मैं कौन, छोटी थी तो सब शंभू की छोकरी कहते थे, बड़ी हुई तो राम नारायण।

हाय हाय कर रही थी और अब क्या फुर्ती से जा रही है मटक मटक कर।

0: भी है और बेबी हमसे पूछे नहीं।
1: जी ना मधु, हर काम में वक्त लगता है। पहले कुत्ता को लेकर आया था, अंधे वर्ष से बच्चे पर छोटा कुत्ता सब पर चढ़ गया, खुद बनना उसको आता नहीं था और बस उसने शोर मचा दिया।
0: राइट सर, एकदम उज्जवल लोग थे।
1: और दूसरा लड़की भागने वाला, हम तो उसे ढूंढ लेते, पर लड़की समझदार थी। राइट गर्ल, अब जैसा उसको खबर है तो लौट आई।
0: अब जी बहुत राइट सर,
1: यूएस शहर बहुत बड़ा है, यानी मेट्रो टाइप नहीं है। सुनो, जब मैं न्यूयॉर्क में था
0: सर, ग्रेविटी गली कोई गेट पर है सर।
1: देखो देखो उस छोटी सड़क, देखो मैं भी देखता हूँ।
0: वो देखिए सर, स्कूटर पार्क करके एक नौजवान आ रहा है।
1: हाँ, तुम बाहर तो ऑफिस में जाओ, फिर बस इसे ऐसा लगना चाहिए हम दिल तक जाते हैं। यू नो द यूजुअल ट्रेड।
0: ऑफ कोर्स सर, 5 मिनट में लेकर आती हूँ। गुड नाइट सर।
1: तब तक मैं ऑफिस जमा लूँ। ओहो, कितनी मिट्टी है मेज पर, साफ करने का भी वक्त नहीं है। सर देखा जाएगा। हाँ, मेरी किताब है, ये मोटी वाली खोल लेता हूँ।
0: मे आई कम इन सर?
1: कम इन
0: सर, ये मिस्टर अंशुमान है।
1: हेलो, आई एम जैन, जैन भंडारकर। हेलो सर, सर आप अभी लेंस से क्या देख रहे थे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, मेरे पर कितनी धूल है। इस पर जो भी आता है अपने फिंगर प्रिंट तोड़ जाता है।
2: ओह,
1: और भी बहुत कुछ है, वो हमारे सीक्रेट स्पेशल बात है।
2: जी जी,
1: मैं बता नहीं सकता। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
2: वो बात ये सर कि वो क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है सर,
1: और आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं। राइट?
2: नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात ये सर कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, और उससे भी पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की है कैसी है।
1: तो आप उससे घर या कॉलेज में चले जाते हैं?
2: नहीं जा सकता ना सर।
1: क्यों?
2: क्योंकि सर वो एम ए कर चुकी है और उसके घर के सब लोग मुझे पहचानते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाने का चलन हमारे यहाँ आज भी नहीं है ना।
1: ठीक है, आप हमें से उसका पता दे दें, फिर सब कुछ हम पर छोड़ दें। वो लड़की का नाम क्या है?
2: लड़की का नाम है शारदा।
1: लाइए पता मैं लिख देता हूँ। आपकी फीस
0: फिलहाल तो आप 500 रुपये जमा करा दें।
1: बिल्कुल, ये लीजिए। ये लीजिए सर। सर आप लोग कैसे क्या करेंगे?
2: लेकिन सर, मेरी सेक्रेटरी मधु उससे दोस्ती करेगी, फिर वह उसको किसी सुनसान पार्क में ले जाएगी।
1: उधर एक गुंडा इनको छेड़ेगा।
2: कौन? फिर
1: दूसरी तरफ से मैं और आप सिर्फ गुंडे को पीटेंगे। मैं उसे कॉलर पकड़ कर ले जाऊंगा और आप उससे आराम से बातें करिएगा।
2: वाह, क्या बढ़िया ब्रिलियंट आइडिया सर, क्या प्लान है, एकदम फिल्मी अंदाज में।
1: बाय गॉड, क्या मजा आ जाएगा सर। आप जानते हैं न्यूयॉर्क में लोग मुझे क्या कहते थे?
2: क्या कहते थे सर?
1: जायंट नहीं, जायंट।
2: जायंट? जायंट तो मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी भारी भारी बर्तन चीज को कहते हैं।
1: और आप तो माशाल्लाह बड़े मुख्तसिब से एकदम यही इंसान है, छोटे से बिल्कुल सीखे सुलझे से।
2: ये तो है, कोई देखने में जायंट लगता है मिसाल का है और कोई दिमाग से जायंट होता है,
1: जैसे शर्लक होम्स, जेम्स बॉन्ड, हरक्यूलिस।
2: सब तो दुनिया के मशहूर उपन्यास वाले जासूस है ना सर?
1: हाँ, और मैं असली जासूस हूँ, जायंट द जायंट।
0: सर दूसरे ऊपर के खर्चों के लिए जैसे गुंडे को देना होगा और फिर हम लोगों का आना जाना।
1: राइट, जाना है आपका?
2: वो क्या बोलते हैं,
1: अंशुमान 500 रुपया जमा करा देते
2: हैं।
1: लीजिए मैडम। तो ठीक है अंशुमान, हम आपको संपर्क करते जगह और दिन बता देंगे।
2: ठीक है सर, मैं चलता हूँ।
1: सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज।
2: अच्छा सर, तो मैं चलता हूँ। बाय
0: सर। गया, हमें 1000 रुपये दे गया।
1: पैसे लेने वाले गुट तुम्हें याद है ना मधु?
0: यस सर, पहले 500 रुपये बोलो, अगर उसके चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो, और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो 500 और।
1: सर अब तुम बताओ, उस लड़की से आगे की दोस्ती कैसे करोगे?
0: वो तो मैं कर लूंगी, पर उन

0: के चेहरे पर कोई रेखा न उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो और फिर कोई रिएक्शन न हो तो 500 और।
1: खैर अब तुम बताओ उस लड़की से आगे की दोस्ती कैसे करोगे?
0: वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा।
1: तुम दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरा भाई है ना, वो मेरी बुआ जी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही और मान जाएगा।
0: आप चंद्र जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम हैं, गुंडे कैसे लगेंगे सर, और फिर वो तो जेंटलमैन लगते हैं।
1: मेकअप माय डियर मेकअप, तुम बस देखे जाओ।
0: पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। जब मधु ओखली ने सिर दिया है तो मूसलों के क्या डरना। जी कहिए, क्या काम है आपको? मैडम मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ आइए बैठिए, आप पूछिए जो भी पूछना है आपको। आपका नाम टाइप किया हुआ फॉर्म है ना आपके पास? लाइए मैं खुद ही भर देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है, आप? मधु, मैं मधु हूँ। सर्वे से क्या होगा मधु जी, पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं? अच्छा ये लीजिए भर गया आपका फॉर्म। ओह तो आपने एमए किया है, आजकल क्या कर रही हैं आप?
2: अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ।
0: शारदा जी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके? यानी आजकल तो चलन है फैशन है।
2: अरे नहीं मधु जी, हमारी तो परवरिश हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही है।
0: और ये बताइए आपका है कोई साथ? अरे कहा, ना किसी ने सीटी बजाई, ना कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर हुई, पर हाँ मन जरूर करता है कि कोई साइकिल मिले।
2: जरूर मिलेगा मधु जी, उसका बड़ा सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप लड़की कहाँ है?
0: शारदा जी बस यही पास ही। तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती?
2: अब अकेले कहाँ जाऊँ मधु?
0: मैं भी अकेली हूँ, ऐसा करें कल शाम पार्क चलें, पर जरा सुनसान है।
2: अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी ठीक रहता है, मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो एक दोस्त को मिले आज जैसे।
0: तो कल शाम 6 बजे?
2: हाँ ठीक है मधु, कल पार्क चलते हैं।
0: ऑलराइट
2: ओके मधु, बाय बाय।
0: ओके
3: वो देखो वो आ रही है मधु
1: भैया, आप देखिए आपकी मधु कितनी अच्छी लग रही है पिंक लिबास में, एकदम गुलाब के फूल जैसी।
3: अबे तुझे मत

0: ¿Qué cosa creí yo?
1: सॉरी सर, लो जंगल सिंह पानी पियो।

0: तुमसे मिलना बात करना चाहता था सर।
1: तो आप ये बेचारा तो बीच में ही फंस गया ना, अब उठाओ भाई इसे।
2: इन्हें मैं संभालती हूँ चंदन जी, अब ठीक तो है ना?
3: अरे क्या हो गया जासूसी कैसी कैसी?
2: चंदन जी ज्यादा लगी क्या?
0: तुम्हारा हाथ रखते ही दर्द गायब हो गया मधु, लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा लिया है।
2: हटिए जी, तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे?
0: हाँ, वो और तुम्हें कैसे मालूम?

की होगी। अभी आप सुन रहे थे युगल की लेखिका की सुधा जौहरी प्रस्तुति एस एस व्यास। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र

की आवाजों में महबूब का लिखा गीत। फिल्म का नाम है

स्वागत है। यह राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुनिए अगला गीत अल्पयाग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार है समीर, संगीतकार है नवीन श्रावण और फिल्म का नाम है राजा।

0: जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैंने लिखा हुआ तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ।

रुपया तो डरना चाहिए, एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन देते हैं। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी,

आपको सुनवाते हैं वाजिद खान, श्रिया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार है कौशल मुनीर, संगीत है साजिद वाजिद का और

for driving.

सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द

चमत्कार है जिसके साथ साथ इसरो इनस्पेस और अंतरिक्ष विभाग के

हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। मैं उम्मीदवार हूँ मजरू सुल्तान।

0: लेखन के होते हैं कि थोड़ा वक्ता से मैं कहीं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग किया, आश्चर्य मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आपको बात अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी पहुँच
1: सुना। कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध साथियों। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की और

की और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: रोहिणी से बात की। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंख से बहुत अपॉर्चुनिटी है।
1: उजाली उसकी जादू की एक कार्यक्रम में जादू वाली अभिनेता सदाशिव अमोकुर

संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और संत नाम सिंह जी हिमालय की गोद में।

आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, सर है शंकर जय की शंकर,

श्री राज कपूर, दादा राज कपूर, पिता राजधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती है लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

से पहले उनकी माँ बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थी, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने। और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई

संवेदनशील अभिनेत्री हैं ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खुद भी कहीं न कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

मंदाकिनी कुशिका प्यार भरा नमस्कार। सामने मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रखकर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रखकर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तो आज ही पानी मिटाकर रपट दिखाती है कि प्रेम के बगैर बड़ा कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर

सच्ची परख पूरी नहीं होती। और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी याद नहीं रखना चाहती।

हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात।

Ubica. अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेड़, न नीम, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, न ही डूबते हुए लोगों के लिए

होता है जो दिल में एक खाली पन रह जाता है। निसंदेह है कि हमारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन पन्ने जिंदगी की खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान पने में तेरा एक चुपचाप घर कर गई थी। हाँ ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं

dopo